0: एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है।
1: Well, the Russian president admits that India and Russia continues to maintain long-standing ties and expressed the satisfaction of what he described as special and privileged partnership.
2: I'd like to note with namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership.
1: The Indian Prime Minister also attended the official opening ceremony of 6th World Nomad Games in Bishkek.

0: Prime Minister Narendra Modi has called India's 7.8 quarterly growth a stellar performance and has said that India had achieved it despite the wars, disrupted supply chains and prolonged global uncertainty. He's also renewed his call for an Atmanirbhar Bharat, urging citizens to prioritize Indian products and services. Listen in.
1: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गूंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है. हमें इस गति को बनाए रखना है. हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है. स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल. विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए. शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए. मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. हम जितना ज्यादा स्वदेश